भाई, इतने यंत्र तो कहीं दे माँ माँ कोड़ा माँ, ये तो वो देवी कोड़ा है।